0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, हम मानव अपने दैनिक जीवन में ईश्वरीय वरदानों की चाह रखते हैं। इसके लिए हम बड़ी आस्था से ईश्वर के मंदिर, उनके निवास स्थल में उनकी पूजा आराधना करने को जाते हैं, जिससे हमारे हृदय की मनोकामनाएं पूरी हों। इतना ही नहीं, ईश्वरीय आशीषों को पाने के लिए दान पुण्य के कार्य भी हम संपन्न करते हैं, और देखा जाए तो ईश्वर पर हमारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाती है। वे हमें अपने विश्वासी भक्तों को हमारे नेक और भले कार्यों के कारण निश्चित ही अपनी आशीषों और वरदानों से विभूषित करते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम ईश्वरीय वरदानों को किस रूप में ग्रहण करने को तैयार रहते हैं। श्रोताओं, आज माता कलीसिया पेंतेकोस्त का महापर्व मनाती है, जहां हम पिता ईश्वर के द्वारा पुत्र में पवित्र आत्मा को दुनिया में शिष्यों के बीच भेजे जाने की चर्चा सुनते हैं। पेंतेकोस्त महापर्व आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठ हमारे लिए शिष्यों पर पवित्र आत्मा के उतरने और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का जिक्र करते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए स्वयं से पूछें, क्या हमने अपने ऊपर ईश्वर के आत्मा को उतरने का अनुभव किया है? प्रभु का आत्मा हमारे लिए किस रूप में आता है? पवित्र आत्मा हमें विभिन्न तरह के वरदानों से विभूषित करते हैं, अतः हमने उनकी किस कृपा को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप में अनुभव किया है?
1: उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले, और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में ईश्वर की दिव्य शांति से भर दे, जिसे यीशु हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजते हुए प्रदान करते हैं, जिससे हम उसी शांति को उनके बीच बांट सकें जो अपने जीवन में अशांत और विभिन्न रूपों में बिखरे होने का अनुभव करते हैं। श्रोताओं, प्रेरित चरित्र से लिया गया आज का पहला पाठ शिष्यों के लिए हुए एक अद्भुत चमत्कार का जिक्र करता है। यह हमारे लिए पेंतेकोस्त, उनके ऊपर पवित्र आत्मा के उतरने की चर्चा करता है। अपने स्वर्गारोहण के पूर्व यीशु ने अपने शिष्यों को यरूशलेम से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया था, तब तक जब तक उनमें पवित्र आत्मा ना उतरे और उनके द्वारा उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त ना हो। यीशु अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं और अपने शिष्यों के लिए पिता की ओर से पवित्र आत्मा को भेजते हैं, जिसकी प्राप्ति हेतु शिष्यगण अंतिम व्यारी की कोठरी में जमा होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। अचानक आंधी जैसी आवाज में आग जीवों की भांति विभाजित शिष्यों के ऊपर ठहर गई और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर विभिन्न भाषाएं बोलने लगे। शिष्यों को कई भाषाएं बोलते हुए सुनने वाले स्वयं घबरा जाते और आश्चर्यचकित एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं हैं? श्रोताओं, शिष्य जो अपने में शिक्षित नहीं थे, कैसे अचानक विभिन्न भाषाओं के वक्ता बन जाते हैं? वे शिष्य जो यहूदियों के भय से भयभीत थे, कैसे अचानक निडर हो जाते और सबके सामने पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त का साक्ष्य देने लगते हैं? यह और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर का चमत्कार था, जिसे वे अपने चुने हुए विश्वासी भक्तों और अनुयायियों के लिए प्रकट करते हैं। शिष्यों के लिए ऐसा स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा प्रतिज्ञा में पूरी की जाती है, जिन्होंने पिता की ओर से अपने अनुयायियों के लिए एक सहायक भेजने का वचन दिया था। यह वही आत्मा है जो हमें भी अपने जीवन की सारी चीजों को समझने और उनका साक्ष्य देने हेतु मदद करता है। श्रोताओं, यही मानवीय जीवन और ईश्वरीय प्रजा की सच्चाई है, अर्थात जो मुक्तिदाता ईश्वर पर विश्वास करती और उनके प्रति निष्ठावान बने रहती हैं, वे उस सहायक का अनुभव करते जिसे पिता ने हमारे लिए भेजा है। इस तरह ईश्वर पर हमारा विश्वास हमें कुछ नहीं से सब कुछ बनाता है, जिससे हम उनके प्रेम, शांति और आनंद के वाहक बन सकें। संत पौलुस हमारे लिए इसकी चर्चा आज के दूसरे पाठ कुरिन्थियों के नाम अपने दूसरे पत्र में करते हैं। हम में से हर कोई अपने में ईश्वर के विभिन्न वरदानों और कृपाओं से विभूषित किए गए हैं। हम एक होते हुए भी एक नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने अपने आत्मा का पान कराने के द्वारा हमें अपने कार्यों का साक्षी बनाने हेतु नियुक्त किया है। हमारी योग्यताएं और क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं, जो ईश्वर में हमारे अद्वितीय बनाए जाने की बात को व्यक्त करता है। लेकिन आत्मा एक ही है, जो हमें पिता के द्वारा यीशु ख्रिस्त को दिए गए कार्यों को दूसरों के हित और भलाई में पूरा करने को दिया गया है। श्रोताओं, आज का सुसमाचार जिसका श्रवण हमने किया, हमें यीशु ख्रिस्त में मिली प्रेरिताई को स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है। यीशु ने अपने शिष्यों को अपनी शांति प्रदान की, क्योंकि उनके मन और हृदय में घबराहट के भाव भरे थे। उन्होंने उनके ऊपर फूंक कर उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान किया, जो वायु के रूप में अपनी उपस्थिति को हमारे बीच व्यक्त करता है। इस भांति यीशु ने अपने शिष्यों को स्वयं अपनी प्रेरिताई पाप क्षमा की जिम्मेदारी सौंपी, यह कहते हुए, जिस तरह पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। श्रोताओं, यीशु ख्रिस्त हमारे बीच हमारे पापों को क्षमा करने हेतु आए। उन्होंने किसी पर दोष नहीं लगाया और किसी की बुराई नहीं की, बल्कि क्रूस के काट से घोर दुख सहते हुए भी उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की और उनके पापों को क्षमा कर दिया। यह सचमुच में एक कठिन कार्य है, लेकिन यीशु ने स्वयं इसे पूरा करते हुए हमारे लिए एक साक्ष्य दिया है। लेकिन मानवीय जीवन की कटु सच्चाई यह है कि यीशु की इस प्रेरिताई को दुनिया का कोई भी मानव अपनी शक्ति और सामर्थ्य से कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। श्रोताओं, आज दुनिया को क्षमा की अति आवश्यकता है। क्षमा के अभाव में आज ना जाने कितने परिवारों को, समुदायों, नगरों, देश और राष्ट्रों को नष्ट होना पड़ा है। इस टूटेपन के कारण कितने ही आत्माएं नष्ट हो गई हैं। आइए हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें अपने क्षमा की प्रेरिताई का मर्म समझने को मदद करें, जिससे हम अपने को उनके कार्यों के लिए समर्पित करते हुए दुनिया में ख्रिस्त के लिए आत्माओं को बचा सकें।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं दक्षिण इटली के अचेरा शहर में संत पापा लियो 14वें के प्रेरितिक दौरे का संक्षिप्त रिपोर्ट। संत पापा लियो 14वें शनिवार सुबह 8 बजे वाटिकन के हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरे और 45 मिनट की यात्रा कर अर्कोलियो स्पोर्ट्स मैदान पहुंचे। वहां स्थानीय अधिकारियों ने संत पापा का स्वागत किया। अचेरा दक्षिण इटालियन कंपानिया इलाके में एक बहुत ज्यादा खराब इलाके का हिस्सा है, जो गैर कानूनी डंपिंग और जहरीले कचरे को बिना रोक टोक के जलाने की वजह से पर्यावरण की गिरावट से तबाह हो गया है। 65,000 लोगों का यह शहर तथा कथित तेरा दई फुओकी आग की जमीन के बीच में है। यह इलाका मौत का त्रिकोण भी कहलाता है, जो पिछले 20 सालों से जहरीली आग से घिरा हुआ है, जो खराब जमीन को जला रही है और एक स्वास्थ्य संकट को जन्म दे रही है। संत पापा कार से माता मरियम के स्वर्गूत ग्रहण महागिरजा घर पहुंचे। वहां एकत्रित धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और विश्वासियों से बात करते हुए संत पापा लियो ने परिवारों, काम करने वालों, युवाओं और नगर अधिकारियों को एक साथ चलने के लिए आमंत्रित किया और हर फैसले में मानव गरिमा को सबसे ऊपर रखते हुए और गहरी नाइंसाफी के सामने हार न मानने के लिए प्रेरित किया। संत पापा ने बार बार कलीसिया की छवि को एक फील्ड हॉस्पिटल के समान कहा, जिसका मकसद धीरज के साथ जख्मों को भरना और रोजाना के छोटे छोटे कामों में लगे रहना है, जिनसे भरोसा वापस आता है। ईमानदार काम, साफ सुथरा राज और एक ऐसी संस्कृति जो जिंदगी को उसकी शुरुआत से लेकर उसके अंत तक बचाती है। संत पापा ने माता पिता और दादा दादी के शांत साहस की तारीफ की, जो आर्थिक तंगी के बीच परिवारों को एक साथ रखते हैं, और उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपने देश को निराशा में न छोड़ें, बल्कि सबकी भलाई के कारीगर बनें। अचेरा और पूरे कंपानिया इलाके के लोग बेरोजगारी, लगातार अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और बाहर जाने वाले प्रवासन से जूझ रहे हैं, जिससे उनके सबसे युवा और सबसे मेहनती नागरिक शहरों से दूर हो रहे हैं। कई परिवार मुश्किल अनुबंध और मौसमी मजदूरी पर गुजारा करते हैं। छोटे व्यापार बढ़ती लागत और अलग अलग निवेश से दबाव में हैं, और जहां सेवाएं कम हैं वहां नागर समाज को अक्सर आगे आना पड़ता है। इस मामले में संत पापा ने साफ हाथ और साफ दिल की अपील की और नागरिकों से भ्रष्टाचार का सामना करने, सार्वजनिक संसाधनों की जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने और सबसे कमजोर लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की रक्षा करने के लिए अपील की। सुसमाचार से प्रेरणा लेते हुए संत पापा ने एक ऐसा रास्ता सुझाया जो हृदय परिवर्तन को नागरिक दोस्ती से जोड़ता है। गरीबों को पहले रखें। पल्लियों और धर्म प्रांत के संसाधन को मुश्किल में फंसे नागरिकों, बेरोजगारों और बीमारी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए दें। उचित काम करें। युवा व्यवसायिकों का साथ दें। सहकारी और सामाजिक उद्यम को बढ़ावा दें और उन कंपनियों को प्राथमिकता दें जो श्रम अधिकार और वातावरण का सम्मान करती है। संत पापा ने उन पुरोहितों, धर्म बहनों और स्वयं सेवकों को धन्यवाद दिया जो लोगों के संघर्षों में उनके करीब रहते हैं, और उन्होंने उन सरकारी अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। महागिरजाघर में अपना संदेश समाप्त करने के बाद संत पापा पापा मोबाइल में अचेरा शहर की गलियों से आगे बढ़ते हुए कालापारी चौक पहुंचे। कालापारी चौक पर बनाए गए सुंदर स्टेज में संत पापा का स्वागत वहां के महापौर ने किया। इसके बाद संत पापा ने कहा, प्यारे दोस्तों, आज अचेरा में मेरी मौजूदगी का यही खास मतलब है, उस गरिमा और जिम्मेदारी की भावना को पक्का करना और बढ़ावा देना जो हर सच्चे दिल में तब महसूस होती है जब जिंदगी शुरू होती है और तुरंत मौत का खतरा होता है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह शनिवार की सुबह उनके बीच बिताकर और एक बार फिर ऐसे इलाके में आकर खुशी हो रही है जिसकी खूबसूरती को कोई अन्याय मिटा नहीं सकती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, जिंदगी में हम यह समझते हैं कि खूबसूरती जितनी नाजुक होती है
उतनी ही ज्यादा देखभाल और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। संत पापा लियो ने धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, डीकनों, धर्म बहनों और विश्वासियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने विश्व पत्र लाउदातो सी के संदेश और संत पापा फ्रांसिस के लगातार बाहर की ओर देखने, मिशनरी सिनोडल कलीसिया बनने के निमंत्रण को तुरंत अपनाया। संत पापा लियो ने कहा, एक साथ चलना, खुद को अहमियत देने वाली सोच पर काबू पाना, विरोध और धमकियों के बावजूद हिम्मत से भविष्यवाणी करना, यही प्रभु हमसे चाहते हैं और उनकी आत्मा हमें प्रेरित करती है। संत पापा ने जोर देकर कहा, इस क्षेत्र में जीवन मौजूद है जो मौत का विरोध करता है, न्याय मौजूद है जो अन्याय पर विजय पाएगा। संत पापा ने अपील करते हुए कहा, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, हम में से हर कोई जिम्मेदारी लें, हम न्याय चुनें, हम जीवन की सेवा करें। आम भलाई कुछ लोगों के व्यवसाय के फायदों से पहले आती है। उन्होंने कहा, उस तकलीफ की कीमत और वजन हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप नए जन्म के समय की ओर बढ़ रहे हैं जो हटाने या इनकार करने का समय नहीं है, बल्कि नैतिक काम और सक्रिय याद का समय है। संत पापा ने कहा, यह सोचने का समय है जिसकी ओर विश्व पत्र लाउदातो सी ने सभी इंसानों को बुलाया है, हर कोई अपनी जिम्मेदारियों से शुरुआत करें। संत पापा ने उन अगुवाओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने अपने साहसिक प्रतिबद्धता से इस क्षेत्र के बुराइयों की सबसे पहले निंदा की। उन्होंने सभी से कहा, जैसे कोई अपने घर के दरवाजे पर नजर रखता है, वैसे ही दुनिया की सेहत का भी ध्यान रखें और उन तरीकों से जुड़ी ताकत और अमीरी के लालच को नकारें जो धरती, पानी, हवा और इंसानों के साथ रहने को गंदा करते हैं। अपना संबोधन समाप्त करने के बाद संत पापा ने वहां उपस्थित विश्वासियों के साथ मिलकर छोटी प्रार्थना की, उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया और कार से अर्कोलियो स्पोर्ट्स मैदान पहुंचे। वहां स्थानीय अधिकारियों ने संत पापा को विदाई दी और संत पापा करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर से वाटिकन के लिए उड़ान भरे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं

0: श्रोताओं, हम मानव अपने दैनिक जीवन में ईश्वरीय वरदानों की चाह रखते हैं। इसके लिए हम बड़ी आस्था से ईश्वर के मंदिर, उनके निवास स्थल में उनकी पूजा आराधना करने को जाते हैं, जिससे हमारे हृदय की मनोकामनाएं पूरी हों। इतना ही नहीं, ईश्वरीय आशीषों को पाने के लिए दान पुण्य के कार्य भी हम संपन्न करते हैं, और देखा जाए तो ईश्वर पर हमारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाती है। वे हमें अपने विश्वासी भक्तों को हमारे नेक और भले कार्यों के कारण निश्चित ही अपनी आशीषों और वरदानों से विभूषित करते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम ईश्वरीय वरदानों को किस रूप में ग्रहण करने को तैयार रहते हैं। श्रोताओं, आज माता कलीसिया पेंतेकोस्त का महापर्व मनाती है, जहां हम पिता ईश्वर के द्वारा पुत्र में पवित्र आत्मा को दुनिया में शिष्यों के बीच भेजे जाने की चर्चा सुनते हैं। पेंतेकोस्त महापर्व आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठ हमारे लिए शिष्यों पर पवित्र आत्मा के उतरने और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का जिक्र करते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए स्वयं से पूछें, क्या हमने अपने ऊपर ईश्वर के आत्मा को उतरने का अनुभव किया है? प्रभु का आत्मा हमारे लिए किस रूप में आता है? पवित्र आत्मा हमें विभिन्न तरह के वरदानों से विभूषित करते हैं, अतः हमने उनकी किस कृपा को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप में अनुभव किया है?
1: उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले, और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में ईश्वर की दिव्य शांति से भर दे, जिसे यीशु हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजते हुए प्रदान करते हैं, जिससे हम उसी शांति को उनके बीच बांट सकें जो अपने जीवन में अशांत और विभिन्न रूपों में बिखरे होने का अनुभव करते हैं। श्रोताओं, प्रेरित चरित से लिया गया आज का पहला पाठ शिष्यों के लिए हुए एक अद्भुत चमत्कार का जिक्र करता है। यह हमारे लिए पेंतेकोस्त, उनके ऊपर पवित्र आत्मा के उतरने की चर्चा करता है। अपने स्वर्गारोहण के पूर्व यीशु ने अपने शिष्यों को यरूशलेम से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया था, तब तक जब तक उनमें पवित्र आत्मा ना उतरे और उनके द्वारा उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त ना हो। यीशु अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं और अपने शिष्यों के लिए पिता की ओर से पवित्र आत्मा को भेजते हैं, जिसकी प्राप्ति हेतु शिष्यगण अंतिम व्यारी की कोठरी में जमा होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। अचानक आंधी जैसी आवाज में आग जीवों की भांति विभाजित शिष्यों के ऊपर ठहर गई और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर विभिन्न भाषाएं बोलने लगे। शिष्यों को कई भाषाएं बोलते हुए सुनने वाले स्वयं घबरा जाते और आश्चर्यचकित एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? श्रोताओं, शिष्य जो अपने में शिक्षित नहीं थे, कैसे अचानक विभिन्न भाषाओं के वक्ता बन जाते हैं? वे शिष्य जो यहूदियों के भय से भयभीत थे, कैसे अचानक निडर हो जाते और सबके सामने पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त का साक्ष्य देने लगते हैं? यह और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर का चमत्कार था, जिसे वे अपने चुने हुए विश्वासी भक्तों और अनुयायियों के लिए

प्रकट करते हैं। शिष्यों के लिए ऐसा स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा प्रतिज्ञा में पूरी की जाती है, जिन्होंने पिता की ओर से अपने अनुयायियों के लिए एक सहायक भेजने का वचन दिया था। यह वही आत्मा है जो हमें भी अपने जीवन की सारी चीजों को समझने और उनका साक्ष्य देने हेतु मदद करता है। श्रोताओं, यही मानवीय जीवन और ईश्वरीय प्रजा की सच्चाई है, अर्थात जो मुक्तिदाता ईश्वर पर विश्वास करती और उनके प्रति निष्ठावान बने रहती हैं, वे उस सहायक का अनुभव करते जिसे पिता ने हमारे लिए भेजा है। इस तरह ईश्वर पर हमारा विश्वास हमें कुछ नहीं से सब कुछ बनाता है, जिससे हम उनके प्रेम, शांति और आनंद के वाहक बन सकें। संत पौलुस हमारे लिए इसकी चर्चा आज के दूसरे पाठ कुरुंथियों के नाम अपने दूसरे पत्र में करते हैं। हम में से हर कोई अपने में ईश्वर के विभिन्न वरदानों और कृपाओं से विभूषित किए गए हैं। हम एक होते हुए भी एक नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने अपने आत्मा का पान कराने के द्वारा हमें अपने कार्यों का साक्षी बनाने हेतु नियुक्त किया है। हमारी योग्यताएं और क्षमताएं भिन्न भिन्न है, जो ईश्वर में हमारे अद्वितीय बनाए जाने की बात को व्यक्त करता है। लेकिन आत्मा एक ही है, जो हमें पिता के द्वारा यीशु ख्रिस्त को दिए गए कार्यों को दूसरों के हित और भलाई में पूरा करने को दिया गया है। श्रोताओं, आज का सुसमाचार जिसका श्रवण हमने किया, हमें यीशु ख्रिस्त में मिली प्रेरिताई को स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है। यीशु ने अपने शिष्यों को अपनी शांति प्रदान की, क्योंकि उनके मन और हृदय में घबराहट के भाव भरे थे। उन्होंने उनके ऊपर फूंक कर उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान किया, जो वायु के रूप में अपनी उपस्थिति को हमारे बीच व्यक्त करता है। इस भांति यीशु ने अपने शिष्यों को स्वयं अपनी प्रेरिताई पाप क्षमा की जिम्मेदारी सौंपी, यह कहते हुए, जिस तरह पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। श्रोताओं, यीशु ख्रिस्त हमारे बीच हमारे पापों को क्षमा करने हेतु आए। उन्होंने किसी पर दोष नहीं लगाया और किसी की बुराई नहीं की, बल्कि क्रूस के काट से घोर दुख सहते हुए भी उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की और उनके पापों को क्षमा कर दिया। यह सचमुच में एक कठिन कार्य है, लेकिन यीशु ने स्वयं इसे पूरा करते हुए हमारे लिए एक साक्ष्य दिया है। लेकिन मानवीय जीवन की कटु सच्चाई यह है कि यीशु की इस प्रेरिताई को दुनिया का कोई भी मानव अपनी शक्ति और सामर्थ्य से कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। श्रोताओं, आज दुनिया को क्षमा की अति आवश्यकता है। क्षमा के अभाव में आज ना जाने कितने परिवारों को, समुदायों, नगरों, देश और राष्ट्रों को नष्ट होना पड़ा है। इस टूटेपन के कारण कितनी ही आत्माएं नष्ट हो गई हैं। आइए हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें अपने क्षमा की प्रेरिताई का मर्म समझने को मदद करें, जिससे हम अपने को उनके कार्यों के लिए समर्पित करते हुए दुनिया में ख्रिस्त के लिए आत्माओं को बचा सकें।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं दक्षिण इटली के अचेरा शहर में संत पापा लियो 14वें के प्रेरितिक दौरे का संक्षिप्त रिपोर्ट। संत पापा लियो 14वें शनिवार सुबह 8 बजे वाटिकन के हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरे और 45 मिनट की यात्रा कर अर्कोलियो स्पोर्ट्स मैदान पहुंचे। वहां स्थानीय अधिकारियों ने संत पापा का स्वागत किया। अचेरा दक्षिण इटालियन कंपानिया इलाके में एक बहुत ज्यादा खराब इलाके का हिस्सा है, जो गैर कानूनी डंपिंग और जहरीले कचरे को बिना रोक टोक के जलाने की वजह से पर्यावरण की गिरावट से तबाह हो गया है। 65,000 लोगों का यह शहर तथा कथित तेर्रा दई फुओकी आग की जमीन के बीच में है। यह इलाका मौत का त्रिकोण भी कहलाता है, जो पिछले 20 सालों से जहरीली आग से घिरा हुआ है, जो खराब जमीन को जला रही है और एक स्वास्थ्य संकट को जन्म दे रही है। संत पापा कार से माता मरियम के स्वर्गूत ग्रहण महागिरजा घर पहुंचे। वहां एकत्रित धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और विश्वासियों से बात करते हुए संत पापा लियो ने परिवारों, काम करने वालों, युवाओं और नगर अधिकारियों को एक साथ चलने के लिए आमंत्रित किया और हर फैसले में मानव गरिमा को सबसे ऊपर रखते हुए और गहरी नाइंसाफी के सामने हार न मानने के लिए प्रेरित किया। संत पापा ने बार बार कलीसिया की छवि को एक फील्ड हॉस्पिटल के समान कहा, जिसका मकसद धीरज के साथ जख्मों को भरना और रोजाना के छोटे छोटे कामों में लगे रहना है, जिनसे भरोसा वापस आता है। ईमानदार काम, साफ सुथरा राज और एक ऐसी संस्कृति जो जिंदगी को उसकी शुरुआत से लेकर उसके अंत तक बचाती है। संत पापा ने माता पिता और दादा दादी के शांत साहस की तारीफ की, जो आर्थिक तंगी के बीच परिवारों को एक साथ रखते हैं, और उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपने देश को निराशा में न छोड़ें, बल्कि सबकी भलाई के कारीगर बनें। अचेरा और पूरे कंपानिया इलाके के लोग बेरोजगारी, लगातार अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और बाहर जाने वाले प्रवासन से जूझ रहे हैं, जिससे उनके सबसे युवा और सबसे मेहनती नागरिक शहरों से दूर हो रहे हैं। कई परिवार मुश्किल अनुबंध और मौसमी मजदूरी पर गुजारा करते हैं। छोटे व्यापार बढ़ती लागत और अलग अलग निवेश से दबाव में हैं, और जहाँ सेवाएं कम हैं वहाँ नागर समाज को अक्सर आगे आना पड़ता है। इस मामले में संत पापा ने साफ हाथ और साफ दिल की अपील की और नागरिकों से भ्रष्टाचार का सामना करने, सार्वजनिक संसाधनों की जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने और सबसे कमजोर लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की रक्षा करने के लिए अपील की। सुसमाचार से प्रेरणा लेते हुए संत पापा ने एक ऐसा रास्ता सुझाया जो हृदय परिवर्तन को नागरिक दोस्ती से जोड़ता है। गरीबों को पहले रखें, पल्लियों और धर्म प्रांत के संसाधन को मुश्किल में फंसे नागरिकों, बेरोजगारों और बीमारी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए दें। उचित काम करें, युवा व्यवसायिकों का साथ दें, सहकारी और सामाजिक उद्यम को बढ़ावा दें और उन कंपनियों को प्राथमिकता दें जो श्रम अधिकार और वातावरण का सम्मान करती है। संत पापा ने उन पुरोहितों, धर्म बहनों और स्वयं सेवकों को धन्यवाद दिया जो लोगों के संघर्षों में उनके करीब रहते हैं, और उन्होंने उन सरकारी अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। महागिरजाघर में अपना संदेश समाप्त करने के बाद संत पापा पापा मोबाइल में अचेरा शहर की गलियों से आगे बढ़ते हुए कालापारी चौक पहुंचे। कालापारी चौक पर बनाए गए सुंदर स्टेज में संत पापा का स्वागत वहां के महापौर ने किया। इसके बाद संत पापा ने कहा, प्यारे दोस्तों, आज अचेरा में मेरी मौजूदगी का यही खास मतलब है, उस गरिमा और जिम्मेदारी की भावना को पक्का करना और बढ़ावा देना जो हर सच्चे दिल में तब महसूस होती है जब जिंदगी शुरू होती है और तुरंत मौत का खतरा होता है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह शनिवार की सुबह उनके बीच बिताकर और एक बार फिर ऐसे इलाके में आकर खुशी हो रही है जिसकी खूबसूरती को कोई अन्याय मिटा नहीं सकती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, जिंदगी में हम यह समझते हैं कि खूबसूरती जितनी नाजुक होती है
उतनी ही ज्यादा देखभाल और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। संत पापा लियो ने धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, डीकनों, धर्म बहनों और विश्वासियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने विश्व पत्र लाउदातो सी के संदेश और संत पापा फ्रांसिस के लगातार बाहर की ओर देखने, मिशनरी सिनोडल कलीसिया बनने के निमंत्रण को तुरंत अपनाया। संत पापा लियो ने कहा, एक साथ चलना, खुद को अहमियत देने वाली सोच पर काबू पाना, विरोध और धमकियों के बावजूद हिम्मत से भविष्यवाणी करना, यही प्रभु हमसे चाहते हैं और उनकी आत्मा हमें प्रेरित करती है। संत पापा ने जोर देकर कहा, इस क्षेत्र में जीवन मौजूद है जो मौत का विरोध करता है, न्याय मौजूद है जो अन्याय पर विजय पाएगा। संत पापा ने अपील करते हुए कहा, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, हम में से हर कोई जिम्मेदारी लें, हम न्याय चुनें, हम जीवन की सेवा करें। आम भलाई कुछ लोगों के व्यवसाय के फायदों से पहले आती है। उन्होंने कहा, उस तकलीफ की कीमत और वजन हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप नए जन्म के समय की ओर बढ़ रहे हैं जो हटाने या इनकार करने का समय नहीं है, बल्कि नैतिक काम और सक्रिय याद का समय है। संत पापा ने कहा, यह सोचने का समय है जिसकी ओर विश्व पत्र लाउदातो सी ने सभी इंसानों को बुलाया है, हर कोई अपनी जिम्मेदारियों से शुरुआत करें। संत पापा ने उन अगुवाओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने अपने साहसिक प्रतिबद्धता से इस क्षेत्र के बुराइयों की सबसे पहले निंदा की। उन्होंने सभी से कहा, जैसे कोई अपने घर के दरवाजे पर नजर रखता है, वैसे ही दुनिया की सेहत का भी ध्यान रखें और उन तरीकों से जुड़ी ताकत और अमीरी के लालच को नकारें जो धरती, पानी, हवा और इंसानों के साथ रहने को गंदा करते हैं। अपना संबोधन समाप्त करने के बाद संत पापा ने वहां उपस्थित विश्वासियों के साथ मिलकर छोटी प्रार्थना की, उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया और कार से अर्कोलियो स्पोर्ट्स मैदान पहुंचे। वहां स्थानीय अधिकारियों ने संत पापा को विदाई दी और संत पापा करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर से वाटिकन के लिए उड़ान भरे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: क्रूस का चिन्ह
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।
0: प्रेरितों का धर्मसार
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए क्रूस पर ठोके गए मर गए दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे

0: और मृत का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा वेद। माता मरियम एलिजाबेद से भेंट करती है,
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव
0: हे
1: के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के संचार विभाग की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। टाइबर नदी के किनारे एक छोटी पहाड़ी पर बसा वैटिकन सिटी न केवल दुनिया का सबसे छोटा देश होने के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि अपने अंदर ख्रिस्ती धर्म के 2000 से अधिक वर्षों पुराने इतिहास संजो कर रखा है, जो ख्रिस्तियों सहित उन सभी लोगों को आकर्षित करता है जो कला, संस्कृति और शांति प्रिय हैं। यहाँ सालों भर तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इसके सभी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वैटिकन में कई विभाग हैं। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम वैटिकन के संचार विभाग पर चर्चा करेंगे। जब कई लोग दीवारें खड़ी कर रहे हों, विचारधाराओं की दीवारें, तो यह पुल बनाने, जब बहुत सारे लोग फूट डाल रहे हों तो मेल जोल बढ़ाने, और जब कई लोग उदासीनता पसंद कर रहे हों तो यह हमारे समय की दुखद घटनाओं में खुद को शामिल होने देने का बुलावा है। इन्हीं शब्दों के साथ पोप फ्रांसिस ने 31 अक्टूबर 2024 को वैटिकन संचार विभाग के साथ अपनी अंतिम मुलाकात में इसके मिशन की याद दिलाई थी। पोप लियो 14वें ने अपने चुनाव के बाद संचार विभाग के सदस्यों के साथ अपनी पहली मुलाकात में उनसे एक अलग तरह के संचार को अपनाने की सलाह दी, एक ऐसा संचार जो किसी भी कीमत पर आम सहमति नहीं चाहता, खुद को गुस्सैले शब्दों में नहीं छिपाता, जटिलता के मॉडल को नहीं अपनाता और सच की खोज को उस प्यार से अलग नहीं करता जिसके साथ हमें विनम्रता से उसे खोजना चाहिए। 19 जून को वैटिकन रेडियो के संत मरिया दी गैलेरिया ब्रॉडकास्टिंग सेंटर का दौरा करते हुए पोप लियो ने लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में अपने मिशनरी कार्य के दौरान वैटिकन रेडियो के शॉर्टवेव प्रसारण को याद किया। उन्होंने बातचीत के मिशनरी महत्व को भी दोहराया। यही वह नींव है जिस पर वैटिकन संचार काम करती है। वैटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट हैं मिस्टर पाओलो रूफिनी और सचिव मोनसिनियर लूचो रूइस। अगर हम संचार विभाग के इतिहास की बात करें तो विभाग की स्थापना पोप फ्रांसिस ने 27 जून 2015 को मोतू प्रोप्रियो वर्तमान संचार संदर्भ के साथ की थी, जिसका नाम पहले संचार का सचिवालय था। संचार के सचिवालय को वैटिकन संचार प्रणाली को पुनर्स्थापित करने का काम सौंपा गया था, जिसने संचार के सभी संस्थानों को एक साथ लाया। इस बृहद परिवार में सामाजिक संचार के लिए परमधम पीठ्य समिति, वैटिकन प्रेस कार्यालय, वैटिकन प्रिंटिंग हाउस, फोटोग्राफिक सेवा, लॉ साल्वातोरे रोमानो, वैटिकन पब्लिशिंग हाउस, वैटिकन रेडियो, वैटिकन टेलीविजन सेंटर और वैटिकन इंटरनेट सेवा को एक साथ रखा गया है। लेकिन पहले ये अलग अलग चल रही थी। 9 संस्थानों को एक ही संपादक के और प्रबंधन के अंदर लाना सहज काम नहीं था, जिनका अपना इतिहास और अपनी परंपराएं थीं। इन संस्थानों में सबसे पुराना वैटिकन प्रिंटिंग हाउस है, जिसे पोप सिक्स्तुस पांचवें ने 27 अप्रैल 1587 को वैटिकन प्रिंटिंग हाउस के नाम से शुरू किया था। वैटिकन समाचार पत्र लो साल्वातोरे रोमानो पहली बार 1 जुलाई 1861 को प्रकाशित हुआ था। लिब्रेरिया एडिट्रिचे वतिकाना, जो वैटिकन का आधिकारिक प्रकाशन केंद्र है, 1926 में शुरू हुआ, वैटिकन रेडियो की शुरुआत 12 फरवरी 1931 को पोप पियूस 11वें ने वैटिकन सिटी के प्रसारक के रूप में की थी। इस सुधार से पत्रकारिता में क्रांति आ गई है, जो दिसंबर 2017 से सक्रिय वैटिकन न्यूज वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन जानकारी और बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी मौजूदगी से स्पष्ट है। 1939 में वैटिकन प्रेस ऑफिस बनाया गया, जो पोप और परमधम पीठ की अलग अलग गतिविधियों से जुड़ी सभी खबरें एवं आधिकारिक खबर फैलाने के लिए उत्तरदायी था। शुरू में यह लो सल्वातोरे रोमानो का एक छोटा ऑफिस था, जिसका मकसद

और देते के क्रिसमस संदेश को उस समय बनी नई वेबसाइट www.vatican.va पर ऑनलाइन प्रकाशित किया गया। जैसा कि प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम में कहा गया है, संचार विभाग परमधम पीठ की पूरी संचार प्रणाली के लिए जिम्मेदार है और वैटिकन के सभी संचार गतिविधियों को एक साथ लाती है ताकि पूरी प्रणाली कलीसिया के सुसमाचार प्रचार मिशन की जरूरतों के हिसाब से काम करे। ऐसा करने के लिए यह उत्पादन मॉडल तकनीकी नवाचारों और संचार के मौजूदा तकनीकों एवं भविष्य में विकसित होने वाले तरीकों का इस्तेमाल करता है। अपने तय कामों के अलावा यह कलीसिया के संचार गतिविधियों के ईश शास्त्रीय एवं प्रेरितिक पहलुओं पर भी ध्यान देता है। यह विश्वासों को इस जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करता है कि हम में से हर एक जन यह सुनिश्चित करें कि सभ्यता और नैतिकता को आगे बढ़ाने की सेवा में कलीसिया के प्रेरितिक मिशन के लिए बातचीत के कई तरीके मौजूद हों। यह वैटिकन राज्य सचिवालय के साथ मिलकर काम करता है और रोमन कोरिया के दूसरे संस्थानों एवं परमधम पीठ तथा वैटिकन सिटी के गवर्नरेट से जुड़े कार्यालयों तथा संस्थानों को उनके संचार की कोशिशों में सहयोग करता है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के संचार विभाग के बारे सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका प्यारी भाभी। लेखक है सिद्धार्थ खान चंदानी। श्रोताओ, सभी कहते हैं कि लड़कों और लड़कियों की परवरिश में माँ बाप को एक सा बर्ताव करना चाहिए, पर देखा जाता है कि लड़कों को मनचाहा घूमने फिरने पढ़ने लिखने की छूट मिलती है। लड़कियों को स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई करके सीधे घर वापस आने को कहा जाता है। माता पिताओं को समाज और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पड़ोसियों के ताने सुनने से बचने के लिए अपनी बच्चियों पर बहुत सारी बंदिशें लगानी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में कुछ लड़कियां चुपचाप माता पिता का कहा मान लेती हैं। उनकी पहचान, आत्मविश्वास और प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं। पर कुछ लड़कियां अपने प्रति समाज और परिवार के सदस्यों की गलती मानसिकता और अनावश्यक बंदिश का विरोध करती हैं। पर उनके विरोध के लिए भी सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है, अन्यथा इस विरोध का गलत अंजाम हो सकता है।

0: प्रस्तुत नाटिका में प्राची को अपनी भाभी रश्मि का मार्गदर्शन मिला। रश्मि अपनी सूझबूझ से परिवार की दूषित मानसिकता को दूर करने में सफल हो पाई और प्राची का मनोबल बढ़ाया। तो आइए सुनते हैं सिद्धार्थ खान चंदानी की लिखी नाटिका प्यारी भाभी।
1: बाय मोनल, सुनकर जल्दी आना। ओके, बाय बाय।
2: बाय
3: प्राची, आ गई इतनी देर से। मम्मी नाराज हो रही है, जा पहले उनसे जाकर मिल ले।
1: ओफो भाभी, आपको भी मेरी चौकसी करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या?
3: अरे बाबा, तुम्हें डांट से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, अब जल्दी से चली जाओ।
1: अच्छा ठीक है। भाभी, खाना बन गया है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है।
3: तुम मम्मी से मिलकर आओ पहले, तब तक मैं खाना लगाती हूँ।
4: अरे रश्मि, कहाँ हो भाई?
3: ओहो, क्या हुआ? अभी 2 मिनट पहले ही तो कमरे से आई हूँ, अब क्या चाहिए आपको?
4: अरे भाई, बैठो मेरे पास, क्या दिन भर।
3: 2 मिनट में आती हूँ ना, प्राची को खाना दे दूँ बस।
4: क्या प्राची आ गई? 8 बज रहा है, अरे जरा उसको बुलाना, ये कोई टाइम है घर आने का?
3: जाने भी दीजिए ना, अभी तो आई है बेचारी, मम्मी अलग डांट रही होगी उसे।
4: रश्मि, तुम उसकी तरफदारी इतना मत किया करो, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है।
3: ओहो, अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं उसके कॉलेज के सभी दोस्तों को जानती हूँ, मैं बात करूंगी उससे, ठीक है?
1: भाभी, भाभी, कहाँ हो? भाभी।
3: हाँ आई।
5: प्राची, मोबाइल रखो और ठीक से खाना खाओ।
1: पापा, ठीक से ही खा रही हूँ, बस एक मिनट।
5: ये क्या बदतमीजी है, हर वक्त फोन हाथ में तुम्हारे, और आने जाने का आजकल ये क्या समय हो गया है, क्या करती रहती हो आजकल?
1: पापा, वो कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाले हैं ना, हम लोग एक नाटक करने वाले हैं, और उसकी रिहर्सल के कारण शाम को थोड़ा लेट हो जाती हूँ, बस और क्या।
5: नाटक? तुम कॉलेज पढ़ाई करने जाती हो या ये सब करने? तुम्हें पता है तुम्हारी पढ़ाई पर सालाना कितना खर्चा होता है?
3: पापा जी, एनुअल फंक्शन के दौरान पढ़ाई थोड़ी कम होती है, और अपनी प्राची तो पढ़ाई में बहुत होशियार है, पिछले सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबर लाई थी अपनी प्राची।
5: रश्मि बेटा, तुम इसकी हर बात में सपोर्ट मत करो, अरे अपने भविष्य की कुछ चिंता है इसे?
1: अरे पापा, इसमें भविष्य वाली क्या बात है भाई? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी।
4: चुप रहे प्राची, सही तो कह रहे हैं पापा, बिल्कुल आवारा होती जा रही है।
3: नहीं नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं जी।
4: अरे तुम बीच में मत बोलो जी।
1: भैया, मैं आपको आवारा लगती हूँ?
5: बिल्कुल हो गई हो, और बड़े भाई से किस सुर में बात कर रही हो, नाम डुबोगी हमारा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दोगी। जरा अपने भाई को देखो, सरकारी ऑफिसर है, और अपनी भाभी से कुछ सीखो, टॉपर थी कॉलेज की, और तुम?
1: पापा, आखिर मैंने किया क्या है?
3: प्राची, अब खाना तो खा ले। प्राची,
4: अरे मत जाओ इसके पीछे, जाने दो उसको।
3: प्राची, प्राची, दरवाजा खोलो प्राची। मम्मी, पापा, अरे सुनिए ना, ये प्राची दरवाजा नहीं खोल रही। प्राची, दरवाजा खोलो।
4: प्राची, दरवाजा खोलो। प्राची,
3: प्राची, देखो ऐसा नहीं करते बेटा, गलत बात है, दरवाजा खोलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। प्राची, दरवाजा खोलो।
4: पापा, मैं दरवाजा तोड़ देता हूँ।
5: हाँ ठीक है, जल्दी करो।
1: इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ बस। क्या इसकी इजाजत है मुझे, या ये भी नहीं कर सकती मैं इस घर में?
3: प्राची, तुम दरवाजा खोल दो, हम सब चले जाएंगे।
4: रश्मि, प्राची कहाँ है?
3: अपने कमरे में है, गुमसुम हो गई है। आप लोग भी ना उस पर अकारण सख्ती करते हैं।
4: अकारण? आजकल का जमाना देख रही हो तुम?
3: अरे हमें जमाने से क्या लेना देना, अपनी बहन को देखना जरूरी है। कितनी उदास है वो, कल से कॉलेज भी नहीं गई। अरे फंक्शन में हिस्सा लेने में आखिर बुराई क्या है? देखिए, आप भी तो अपने समय में गाना गाया करते थे ना।
4: अरे भाई, मेरी बात कुछ और थी।
3: और उसकी बात और है ना। अरे उसकी बात अलग क्यों है, क्योंकि वो एक लड़की है। कल को हमारा बच्चा अगर बेटी हुई तो क्या आप उसके साथ भी यही करेंगे?
4: ओफो, कुछ का कुछ मत जोड़ो रश्मि, मुझे मेरी बहन की फिक्र होती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ कुछ बुरा होने की बात सोचकर भी मेरा दिमाग खराब हो जाता है।
3: उसे रुला रुला कर ये प्यार जताने का भला कौन सा तरीका है। देखिए, शादी ब्याह हो जाएगा तब तो बेचारी दूसरों की मर्जी की मोहताज हो ही जाएगी, पर अभी तो उसको उसके हिस्से की खुशियां दे दो, उसकी मर्जी से जीने दो।
4: मगर कुछ?
3: अरे क्या कुछ, वो कुछ गलत नहीं करेगी, मैं इस बात का वादा करती हूँ जी। आप ना प्लीज उससे बात कीजिए।
4: चलो अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ।
3: प्राची, क्या कर रही है मेरी गुड़िया रानी, अपनी भाभी से बात नहीं करोगी?
1: नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है।
3: नाराज हो?
1: नहीं, बस उदास हूँ, ये सोचकर कि मेरे अपने ही मम्मी पापा, मेरा अपना ही भाई मुझ पर विश्वास नहीं करते।
3: अरे ऐसा क्यों सोचते हो?
1: सोचना पड़ेगा ना भाभी, मेरे अपने ही मुझ पर विश्वास नहीं करते। भाभी, आखिर मैंने ऐसा किया क्या है? सिर्फ एक नाटक में पार्टिसिपेट ही तो किया है।
3: नहीं प्राची, तुमसे सब बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए तुम्हारी चिंता करते हैं।
1: नहीं नहीं भाभी, भैया और पापा मुझे समझते ही नहीं, और मम्मी उनका तो साथ देती है मजे से। मैं अपनी पढ़ाई पूरे मन से करती हूँ भाभी, ये तो आप जानती हैं ना, मैंने कभी खराब नंबर स्कोर किया क्या? मगर पढ़ने के अलावा भी कुछ इच्छाएं होती हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है भाभी। हमें लगता है कि हम जिंदा हैं, कुछ हैं, मगर ये लोग मुझे समझते ही नहीं।
3: प्राची, ऐसा नहीं है।
1: ऐसा ही है भाभी, ये भी कोई जीना है। बताइए, गुलामों की तरह इससे तो काश मैं होती ही नहीं। मम्मी पापा तो बस अपने बेटे के साथ ही खुश हैं। वो मुझे लाए क्यों भाभी, मुझे मर जाना चाहिए।
5: प्राची पागल बच्ची, ये क्या कह रही हो? तुझे किसने कहा कि हम तुमसे प्यार नहीं करते? बेटा, माँ बाप की फिक्र को तुम नहीं समझोगे, हमें तुमसे बहुत प्यार है बेटा।
4: अरे मेरी बहना रानी, तू तो सचमुच बहुत बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचने लगी है। तेरा भैया जो है ना, तुझे बहुत प्यार करता है। अच्छा बाबा, ले कान पकड़कर सॉरी बोलता हूँ, अब तो हंस दे।
3: ले, मैंने भी कान पकड़े, अब हंस दे। और सुन, जल्दी से तैयार हो कॉलेज जाने के लिए, रिहर्सल पे नहीं जाना क्या?
1: सच? जाना है भाभी, क्यों नहीं, मेरी प्यारी भाभी।
0: प्यारी भाभी, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे किंशुक चौहान, सुधीर तेलंग, समता भोरेकर और दुर्गेश नंदनी। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के संचार विभाग की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। टाइबर नदी के किनारे एक छोटी पहाड़ी पर बसा वैटिकन सिटी न केवल दुनिया का सबसे छोटा देश होने के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि अपने अंदर ख्रिस्ते धर्म के 2000 से अधिक वर्षों पुराने इतिहास संजो कर रखा है, जो ख्रिस्तियों सहित उन सभी लोगों को आकर्षित करता है जो कला, संस्कृति और शांति प्रिय हैं। यहाँ सालों भर तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इसके सभी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वैटिकन में कई विभाग हैं। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम वैटिकन के संचार विभाग पर चर्चा करेंगे। जब कई लोग दीवारें खड़ी कर रहे हों, विचारधाराओं की दीवारें, तो यह पुल बनाने, जब बहुत सारे लोग फूट डाल रहे हों तो मेल जोल बढ़ाने, और जब कई लोग उदासीनता पसंद कर रहे हों तो यह हमारे समय की दुखद घटनाओं में खुद को शामिल होने देने का बुलावा है। इन्हीं शब्दों के साथ पोप फ्रांसिस ने 31 अक्टूबर 2024 को वैटिकन संचार विभाग के साथ अपनी अंतिम मुलाकात में इसके मिशन की याद दिलाई थी। पोप लियो 14वें ने अपने चुनाव के बाद संचार विभाग के सदस्यों के साथ अपनी पहली मुलाकात में उनसे एक अलग तरह के संचार को अपनाने की सलाह दी, एक ऐसा संचार जो किसी भी कीमत पर आम सहमति नहीं चाहता, खुद को गुस्सैले शब्दों में नहीं छिपाता, जटिलता के मॉडल को नहीं अपनाता और सच की खोज को उस प्यार से अलग नहीं करता जिसके साथ हमें विनम्रता से उसे खोजना चाहिए। 19 जून को वैटिकन रेडियो के संत मरिया दी गैलेरिया ब्रॉडकास्टिंग सेंटर का दौरा करते हुए पोप लियो ने लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में अपने मिशनरी कार्य के दौरान वैटिकन रेडियो के शॉर्टवेव प्रसारण को याद किया। उन्होंने बातचीत के मिशनरी महत्व को भी दोहराया। यही वह नींव है जिस पर वैटिकन संचार काम करती है। वैटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट हैं मिस्टर पाओलो रूफिनी और सचिव मोनसिनियर लूचो रूइस। अगर हम संचार विभाग के इतिहास की बात करें तो विभाग की स्थापना पोप फ्रांसिस ने 27 जून 2015 को मोतू प्रोप्रियो वर्तमान संचार संदर्भ के साथ की थी, जिसका नाम पहले संचार का सचिवालय था। संचार के सचिवालय को वैटिकन संचार प्रणाली को पुनर्स्थापित करने का काम सौंपा गया था, जिसने संचार के सभी संस्थानों को एक साथ लाया। इस बृहद परिवार में सामाजिक संचार के लिए परमधम पीठ समिति, वैटिकन प्रेस कार्यालय, वैटिकन प्रिंटिंग हाउस, फोटोग्राफिक सेवा, लोस अल्बातोरे रोमानो, वैटिकन पब्लिशिंग हाउस, वैटिकन रेडियो, वैटिकन टेलीविजन सेंटर और वैटिकन इंटरनेट सेवा को एक साथ रखा गया है। लेकिन पहले ये अलग अलग चल रही थी। 9 संस्थानों को एक ही संपादक के और प्रबंधन के अंदर लाना सहज काम नहीं था, जिनका अपना इतिहास और अपनी परंपराएं थीं। इन संस्थानों में सबसे पुराना वैटिकन प्रिंटिंग हाउस है, जिसे पोप सिक्स्तुस पांचवें ने 27 अप्रैल 1587 को वैटिकन प्रिंटिंग हाउस के नाम से शुरू किया था। वैटिकन समाचार पत्र लो सल्वातोरे रोमानो पहली बार 1 जुलाई 1861 को प्रकाशित हुआ था। लिब्रेरिया एडिट्रिचे वतिकाना, जो वैटिकन का आधिकारिक प्रकाशन केंद्र है, 1926 में शुरू हुआ, वैटिकन रेडियो की शुरुआत 12 फरवरी 1931 को पोप पियूस 11वें ने वैटिकन सिटी के प्रसारक के रूप में की थी। इस सुधार से पत्रकारिता में क्रांति आ गई है, जो दिसंबर 2017 से सक्रिय वैटिकन न्यूज वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन जानकारी और बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी मौजूदगी से स्पष्ट है। 1939 में वैटिकन प्रेस ऑफिस बनाया गया, जो पोप और परमधम पीठ की अलग अलग गतिविधियों से जुड़ी सभी खबरें एवं आधिकारिक खबर फैलाने के लिए उत्तरदायी था। शुरू में यह लो सल्वातोरे रोमानो का एक छोटा ऑफिस था, जिसका मकसद सीधे पत्रकारों तक खबरें पहुंचाना था, लेकिन द्वितीय वैटिकन महासभा के दौरान यह एक विशेष प्रेस ऑफिस बनने के साथ स्वतंत्र हो गया। वैटिकन टेलीविजन सेंटर की स्थापना 1983 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के आदेश पर हुई। संचार विभाग के अंदर इसकी स्थापना के साथ वैटिकन टेलीविजन सेंटर के प्रोडक्शन को वैटिकन मीडिया का लेबल दिया गया और अंत में 25 दिसंबर 1995 को वैटिकन इंटरनेट सेवा का जन्म हुआ, जिसमें संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के क्रिसमस संदेश को उस समय बनी नई वेबसाइट www.vatican.va पर ऑनलाइन प्रकाशित किया गया। जैसा कि प्रेरितिक संविधान प्रेदिकाते एवेंजेलियम में कहा गया है, संचार विभाग परमधम पीठ की पूरी संचार प्रणाली के लिए जिम्मेदार है और वैटिकन के सभी संचार गतिविधियों को एक साथ लाती है, ताकि पूरी प्रणाली कलीसिया के सुसमाचार प्रचार मिशन की जरूरतों के हिसाब से काम करे। ऐसा करने के लिए यह उत्पादन मॉडल तकनीकी नवाचारों और संचार के मौजूदा तकनीकों एवं भविष्य में विकसित होने वाले तरीकों का इस्तेमाल करता है। अपने तय कामों के अलावा यह कलीसिया के संचार गतिविधियों के ईश शास्त्रीय एवं प्रेरितिक पहलुओं पर भी ध्यान देता है। यह विश्वासों को इस जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करता है कि हम में से हर एक जन यह सुनिश्चित करें कि सभ्यता और नैतिकता को आगे बढ़ाने की सेवा में कलीसिया के प्रेरितिक मिशन के लिए बातचीत के कई तरीके मौजूद हों। यह वैटिकन राज्य सचिवालय के साथ मिलकर काम करता है और रोमन कोरिया के दूसरे संस्थानों एवं परमधम पीठ तथा वैटिकन सिटी के गवर्नरेट से जुड़े कार्यालयों तथा संस्थानों को उनके संचार की कोशिशों में सहयोग करता है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के संचार विभाग के बारे सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका प्यारी भाभी। लेखक है सिद्धार्थ खान चंदानी। श्रोताओ, सभी कहते हैं कि लड़कों और लड़कियों की परवरिश में माँ बाप को एक सा बर्ताव करना चाहिए, पर देखा जाता है कि लड़कों को मनचाहा घूमने फिरने पढ़ने लिखने की छूट मिलती है। लड़कियों को स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई करके सीधे घर वापस आने को कहा जाता है। माता पिताओं को समाज और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पड़ोसियों के ताने सुनने से बचने के लिए अपनी बच्चियों पर बहुत सारी बंदिशें लगानी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में कुछ लड़कियां चुपचाप माता पिता का कहा मान लेती हैं। उनकी पहचान, आत्मविश्वास और प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं। पर कुछ लड़कियां अपने प्रति समाज और परिवार के सदस्यों की गलती मानसिकता और अनावश्यक बंदिश का विरोध करती हैं। पर उनके विरोध के लिए भी सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है, अन्यथा इस विरोध का गलत अंजाम हो सकता है। प्रस्तुत नाटिका में प्राची को अपनी भाभी रश्मि का मार्गदर्शन मिला। रश्मि अपनी सूझबूझ से परिवार की दूषित मानसिकता को दूर करने में सफल हो पाई और प्राची का मनोबल बढ़ाया। तो आइए सुनते हैं सिद्धार्थ खान चंदानी की लिखी नाटिका प्यारी भाभी।
1: सुनकर जल्दी आना, ओके? बाय बाय।
2: बाय।
3: प्राची आ गई इतनी देर से? मम्मी नाराज हो रही हैं। जा पहले उनसे जाकर मिल ले।
1: ओफो भाभी, आपको भी मेरी चौकसी करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या?
3: अरे बाबा, तुम्हें डांट से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, अब जल्दी से चली जाओ।
1: अच्छा ठीक है। भाभी खाना बन गया है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है।
3: तुम मम्मी से मिलकर आओ पहले, तब तक मैं खाना लगाती हूँ।
4: अरे रश्मि, कहाँ हो भाई?
3: ओहो क्या हुआ, अभी 2 मिनट पहले ही तो कमरे से आई हूँ, अब क्या चाहिए आपको?
4: अरे भाई बैठो मेरे पास, क्या दिन भर।
3: 2 मिनट में आती हूँ ना, प्राची को खाना दे दूँ बस।
4: क्या प्राची आ गई? 8 बज रहा है, अरे जरा उसको बुलाना, ये कोई टाइम है घर आने का?
3: जाने भी दीजिए ना, अभी तो आई है बेचारी, मम्मी अलग डांट रही होगी उसे।
4: रश्मि तुम उसकी तरफदारी इतना मत किया करो, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है।
3: ओहो अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं उसके कॉलेज के सभी दोस्तों को जानती हूँ, मैं बात करूंगी उससे, ठीक है?
1: भाभी, भाभी, कहाँ हो? भाभी।
3: हाँ आई।
5: प्राची मोबाइल रखो और ठीक से खाना खाओ।
1: पापा ठीक से ही खा रही हूँ, बस 1 मिनट।
5: ये क्या बदतमीजी है, हर वक्त फोन हाथ में तुम्हारे, और आने जाने का आजकल ये क्या समय हो गया है, क्या करती रहती हो आजकल?
1: पापा वो कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाले हैं ना, हम लोग एक नाटक करने वाले हैं और उसकी रिहर्सल के कारण शाम को थोड़ा लेट हो जाती हूँ, बस और क्या।
5: नाटक? तुम कॉलेज पढ़ाई करने जाती हो या ये सब करने? तुम्हें पता है तुम्हारी पढ़ाई पर सालाना कितना खर्चा होता है?
3: पापा जी एनुअल फंक्शन के दौरान पढ़ाई थोड़ी कम होती है, और अपनी प्राची तो पढ़ाई में बहुत होशियार है, पिछले सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबर लाई थी अपनी प्राची।
5: रश्मि बेटा तुम इसकी हर बात में सपोर्ट मत करो, अरे अपने भविष्य की कुछ चिंता है इसे?
1: अरे पापा इसमें भविष्य वाली क्या बात है भाई, हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी।
4: चुप रहे प्राची, सही तो कह रहे हैं पापा, बिल्कुल आवारा होती जा रही है।
3: नहीं नहीं अब ऐसी कोई बात नहीं जी।
4: अरे तुम बीच में मत बोलो जी।
1: भैया मैं आपको आवारा लगती हूँ?
5: बिल्कुल हो गई हो, और बड़े भाई से किस सुर में बात कर रही हो, नाम डुबोगी हमारा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दोगी। जरा अपने भाई को देखो, सरकारी ऑफिसर है, और अपनी भाभी से कुछ सीखो, टॉपर थी कॉलेज की, और तुम?
1: पापा आखिर मैंने किया क्या है?
3: प्राची अब खाना तो खा ले। प्राची
4: अरे मत जाओ इसके पीछे, जाने दो उसको।
3: प्राची प्राची दरवाजा खोलो प्राची। मम्मी पापा अरे सुनिए ना, ये प्राची दरवाजा नहीं खोल रही, प्राची दरवाजा खोलो।
4: प्राची दरवाजा खोलो, प्राची।
3: प्राची देखो ऐसा नहीं करते बेटा, गलत बात है, दरवाजा खोलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, प्राची दरवाजा खोलो।
4: पापा मैं दरवाजा तोड़ देता हूँ।
5: हाँ ठीक है जल्दी करो।
1: इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ बस। क्या इसकी इजाजत है मुझे, या ये भी नहीं कर सकती मैं इस घर में?
3: प्राची, तुम दरवाजा खोल दो, हम सब चले जाएंगे।
4: रश्मि, प्राची कहाँ है?
3: अपने कमरे में है, गुमसुम हो गई है। आप लोग भी ना उस पर अकारण सख्ती करते हैं।
4: अकारण? आजकल का जमाना देख रही हो तुम?
3: अरे हमें जमाने से क्या लेना देना, अपनी बहन को देखना जरूरी है। कितनी उदास है वो, कल से कॉलेज भी नहीं गई। अरे फंक्शन में हिस्सा लेने में आखिर बुराई क्या है? देखिए आप भी तो अपने समय में गाना गाया करते थे ना।
4: अरे भाई मेरी बात कुछ और थी।
3: और उसकी बात और है ना। अरे उसकी बात अलग क्यों है? क्योंकि वो एक लड़की है। कल को हमारा बच्चा अगर बेटी हुई तो क्या आप उसके साथ भी यही करेंगे?
4: ओफो, कुछ का कुछ मत जोड़ो रश्मि। मुझे मेरी बहन की फिक्र होती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसके साथ कुछ बुरा होने की बात सोचकर भी मेरा दिमाग खराब हो जाता है।
3: उसे रुला रुला कर ये प्यार जताने का भला कौन सा तरीका है? देखिए शादी ब्याह हो जाएगा तब तो बेचारी दूसरों की मर्जी की मोहताज हो ही जाएगी, पर अभी तो उसको उसके हिस्से की खुशियां दे दो, उसकी मर्जी से जीने दो।
4: मगर कुछ?
3: अरे क्या कुछ, वो कुछ गलत नहीं करेगी, मैं इस बात का वादा करती हूँ जी। आप ना प्लीज उससे बात कीजिए।
4: चलो अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ।
3: प्राची क्या कर रही है मेरी गुड़िया रानी, अपनी भाभी से बात नहीं करोगी?
1: नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है।
3: नाराज हो?
1: नहीं बस उदास हूँ, ये सोचकर कि मेरे अपने ही मम्मी पापा, मेरा अपना ही भाई मुझ पर विश्वास नहीं करते।
3: अरे ऐसा क्यों सोचते हो?
1: सोचना पड़ेगा ना भाभी, मेरे अपने ही मुझ पर विश्वास नहीं करते। भाभी आखिर मैंने ऐसा किया क्या है? सिर्फ एक नाटक में पार्टिसिपेट ही तो किया है।
3: नहीं प्राची, तुमसे सब बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए तुम्हारी चिंता करते हैं।
1: नहीं नहीं भाभी, भैया और पापा मुझे समझते ही नहीं, और मम्मी उनका तो साथ देती है मजे से। मैं अपनी पढ़ाई पूरे मन से करती हूँ भाभी, ये तो आप जानती हैं ना, मैंने कभी खराब नंबर स्कोर किया क्या? मगर पढ़ने के अलावा भी कुछ इच्छाएं होती हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है भाभी। हमें लगता है कि हम जिंदा हैं, कुछ हैं, मगर ये लोग मुझे समझते ही नहीं।
3: प्राची ऐसा नहीं है।
1: ऐसा ही है भाभी, ये भी कोई जीना है बताइए, गुलामों की तरह हा? इससे तो काश मैं होती ही नहीं। मम्मी पापा तो बस अपने बेटे के साथ ही खुश हैं, वो मुझे लाए क्यों भाभी, मुझे मर जाना चाहिए।
5: प्राची पागल बच्ची, ये क्या कह रही हो? तुझे किसने कहा कि हम तुमसे प्यार नहीं करते? बेटा माँ बाप की फिक्र को तुम नहीं समझोगे, हमें तुमसे बहुत प्यार है बेटा।
4: अरे मेरी बहना रानी, तू तो सचमुच बहुत बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचने लगी है। तेरा भैया जो है ना तुझे बहुत प्यार करता है। अच्छा बाबा ले कान पकड़कर सॉरी बोलता हूँ, अब तो हंस दे।
3: ले मैंने भी कान पकड़े, अब हंस दे। और सुन जल्दी से तैयार हो कॉलेज जाने के लिए, रिहर्सल पे नहीं जाना क्या?
1: सच? जाना है भाभी, क्यों नहीं मेरी प्यारी भाभी।
0: प्यारी भाभी, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे किंशुक चौहान, सुधीर तेलंग, समता भोरेकर और दुर्गेश नंदनी। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।